0: Elembu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग थेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ नला विश्वासी समक बसुगो लोङबदा रंगला लुइरी शासन लाभ्री थापिन्सुगो जयमसी तथा नमस्कार लासो फेफुला कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ तथा जीवनला क्षणगतला श्रृङ्खलाला अङ्क 39 री रङ्गी र स्वागत मुला नियोग तामाङ तिनी रङ्गती मध्ये लानन देन रङ्गला लुइरी हासिल लाभरी सेमलावा तिगै ताम्ला लागरी दर्शन मुला तिगै थेरङ्ग ताम जुन केन तसै तिगै थेरङ्ग ताम जुन भव्य तसै तसै रङ देन गोर्गी ताम गदी मुला चुसे रङ्गदा लिच्छ खिच ताउजीबा मुला गिच्छा रङ असफल ग्याम लोङ्ब मसुला देन निचा रङ हनङ ग्याम तिबा बिब ताम्री निश्चित आरे लोङ्बला विश्वेदी ताम लामा रङसे चुला सामना लाभा निर्णय लादो मुला अथम रङसे रङला लेङ्ब लुई चुला प्रभावी प्राप्तासी बिताब तादुशुला तिगा हलाना असफल तब भन्दा तिगै प्रयास लसी असफल तब जब हिन्न रङ या दि लोङ्बदा रङला लुई नियन्त्रण लबरी पिनबारी हमसुला देन रङला लक्ष्य हिन्दा रङ या मि यकगिन काबरी हमसुला या मि रङसी कदम चलाब लसी रङला लोङ्बद दावा छनोट लबरी हमसुला साहस विवा लोङ्बला अभाव अहिन्दा बरु चो हजिबाई नोन लोङ्बला बावजुद रङला लक्ष्य याङबरी आवश्यक ज्ञामरी दृढ ताबा देन नक्ष बडब तसिला तयार त हिन्बा दोस्रो राजाहरू सादा देला तिन चरेन थे सहरला ढोकनेर चिबा गोर्नी कुष्ठ रोग कदे मुवा थेनिग देशे आपसी विषम याङ चुरी आशिव देन तिग चिबा सायद तिनी रङ एन याकर्गी रङ महसुस लाभन मसुला लुइसे रङ द निष्पक्ष व्यवहार लभा आरे रङ गेन्ता याङबा पारी रे मैसु जिवा आरे रङ जेखेन दिनलन सङ्घर्ष ग्याम गुजाव लसुबा मुसुला थेन्डे जेखेन अर्को दिन सोबरी मन्सु मुला पहिलो युहन्ना 5 धेला 4 तिब्द विषम परमेश्वर जम्मन कोला गदेसे जम्बुलुङ थोरी डाबरी खम्ला याङसी जम्बुलिङ द डाबचा याङला विश्वास योग्य ज्ञान हुन् हिन्न याङसे सोबला लागरी सङ्घर्ष लवन प्रत्येक दिन बिताब लवा परमेश्वर इच्छा आइन्बा रङला लुइला लागरी रुला दृष्टिकोण दिन सफलता याङबा हिन्न थेन्डे रोसे रङ्दा रङला शक्ति पिन्ब प्रतिज्ञा लस्युब ताकि रङसे रङला लक्ष्य गरे याङबरी हम्ब स्युगो तसै थे लबला लागिरी रङसे रङला लोङबदा दादोला रङसे विश्वास लक्ष्याम लदोला ब्री कष्ट कुष्ठ रोगी गरे थेनी गरी देन याकर्की विकल्प मुबा थेनी गदे सहर फिर्क्या चिबरे जारी थनबरी हाममुला जहाँ थेनी गदे बहिष्कृत चिजिबा खानला लागरी उचित पहुँच जन्न तासेला मुला वा थेनी गदे सहरी चिबरी हाममुला जहाँ अनिकार ज्ञान बस्ती बरे च्याबरी माइबा याकक्की जेखेन वास्तविक सम्भावना मुबा यदि थेनी गदे जहाँ मुबा थेरिन ताजी विषम थेनी गदेला अवस्था सुधार तसेला लगभग हजिबै सम्भावना हरिम मुबा थेनी गदेला याकर्गी जेखेन वास्तविक आशा सहरी बाङ्ब मुबा दोस्रो राजा सादा देला चार यदि याङ सहार नङ निला विषम बिजी विषम थेरी अनिकाल मुला थेन्डे याङ शिला मुला थेन्डे चुरी चिजी विषम याङ याङ शिला चुकारण दर्यम याङ आरामिका देला छाउनेरी निसी समर्पणलाई थेन्डे यदि थेनी गदेसी याङ द खाजी विषम याङ सोला यदि सेजी विषम याङ याङ शिला थेनी गदे सहर नङरी नङरी लोङमुला यदि थेरी चिबम सिपाही गदेसे थेनी गदेदा रुप्तासी विषम थेनी गदेदा सेवरी हम्ला तसै यदि थेनी गरे सहर नगरी क्वाङजी विषम थेनी गरे फोखेन शिवा निश्चित मुबा थेरङ दसी थेनी गदेसे सहर नगरी वाङबा छनोट लजी रङला बारी तिगा मुला तिगा रङ शरीरी वाङबरी तयार मुसुला तिगा रङ असफलताला लोङबाला डाबरी देन रङला भविष्यला लक्ष्य गरी याङबरी कदम चलाबारी तयार मुसुला वा तिगा रङ रङला लेङबा लुइचु सोचदिवन मुसुला कि यदि रङसे परमेश्वरलाई प्रतिज्ञारी विश्वास ल सिजगे लसुजी विषम तिगा लवरे हमसुला हिब्रू एघार अध्यायला एक विश्वास लवसा आस लवताम याङला बिसी ढुक्क तबादेन अमराङ्ब ताम्बे पुराण भर लब हिन्न जबदौन रङसी राङला लक्ष्य गरी बढाव लाला लागरी कदम चलाव लसुमुला याङसी हाइमाइन याङला लुइदी परमेश्वर शक्ति प्रकार तबा महसुस लसुवा जहाँ परमेश्वर सी याङला लागरी भविष्यले बेगन आशिष गरे थान्छु मुला त्यहाँले थेनी गरेर लागेर याकर्की लिच्छला बुद्धि लताम याङसे राङला लक्ष्य रे कदम चलाव लवा नछ थेरी हरङलासी दोषी र बिसी गो आधो थे बो सेवाला लागरी परमेश्वरी भो भरोसा थान्छु गो थेन्दी थे गीत छ कदम चलाव लवला लागरी रो फेरी भरोसा थान्छु गो आमेन रङ्गिला जीवन रे परमेश्वर से प्रशस्त आशिष पिन्छु गए प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङ्गनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम भन्दा सम्पर्क
2: टाइम चेक इट्स 7 PM अहिले साँझ